0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: चांदनी रातें, चांद

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट.
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो.
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली. फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली. देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं निकलेगी भाई की सवारी. हाँ थोड़ा टाइम रुक जा खड़ी कर.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Cool Song.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh.
3: Ranveer Singh.
2: Stay tuned.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
3: कूल सॉन्ग

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. So spread the happiness, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Trishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
5: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Trishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Overseas released by Zee Studios.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।
2: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
3: रेडियो 106.3, जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
3: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
4: लुलू, where the world comes to shop.

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Cool Song.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अब उस सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: Drive the dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
3: Plus 1 lakh riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
2: Offer valid till 16th March 2027.
3: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
2: Drive the dream, only at Abu Sidra Mall.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
2: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas release by Zee Studios.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
3: Hey, this is Liliana De Cruz.
4: This is me, Ritik Roshan.
5: Hi, I'm Alia Bhatt.
6: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: Overseas release by Zee Studios.
5: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
6: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
5: यानी मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
6: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
5: तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
6: नेस्टो 10-20-30, सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: रानी, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
3: लुलू, where the world comes to shop.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: अब सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
3: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
2: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
3: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपनी ड्रीम कार जीतो।
2: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।

कितनी ज्यादा सर्दी है, ऐसा लग रहा है मेरे वेदर वाले ऐप को, क्योंकि अभी जब मैं ऑफिस आने के लिए निकली ना तो मुझे पता चला कि यार टेम्परेचर जैसा मेरा मौसम वाला ऐप दिखा रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। लेकिन अब देखिए यार, मस्ती मजे का तड़का तो अपनी जगह है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम जो है वो कहा जा रहा था कि वीकेंड पे पूरा बदलने वाला है, वीकेंड तो हमारा फन मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हल्की हल्की धूप है, हल्की सी ह्यूमिडिटी थी, लेकिन चलो पहले से बेटर है। बाकी आज बहुत सारी यू नो मस्ती मजे वाली बातें होने वाली है, टेक्नोलॉजी की बातचीत हम करने वाले हैं अलग अलग टाइप की। सो आप जो है अपनी कुर्सी की पेठी बांध लीजिए और वॉल्यूम एकदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अमेजिंग वाले गाने भी आने वाले हैं आपके रेडियो सेट्स पर। आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

जैसे हमारे घर में रिश्तेदारों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है ना कि यार हमारा बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है लाइफ में, आपका बच्चा तो ये नहीं कर पा रहा, उसके मार्क्स कितने आए, हमारे वाले के तो ज्यादा आए. वैसे ही कॉम्पिटिशन जो है जब कंपनीज के बीच में होता है तो मुझे काफी मजा आता है. हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ. अब देखिए यार, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ ना, तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका एक मेजर जो मैं श्रेय देना चाहूँगी वो देना चाहूँगी कॉम्पिटिशन को, क्योंकि

भी होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी देर में कि ऐसा कौन सा फोन है जो आपकी यू नो उंगली पे फिट हो सकता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज. मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर. 3rd October, 11 AM to 8 PM, मैरियट मार्की सिटी सेंटर दोहा. कम एंड डिस्कवर फेस्टिव फैशन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडिट.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: मेरा ना रिकॉर्ड रहा है कि मैं अगर आधे घंटे से ज्यादा अपना फोन यूज करती हूँ तो मैं कोई ना कोई खर्चा कर बैठती हूँ, या तो मुझे कोई जगह पसंद आ जाती है तो मैं सेव कर लेती हूँ एंड वहां जाकर खर्चे कर देती हूँ, या फिर मुझे कुछ ना कुछ शॉपिंग करने में पसंद आ जाता है मैं वहां खर्चा कर देती हूँ, या तो किसी ना किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ तो मेरा खर्चा हो ही जाता है। जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, मेरे को फोन यूज कम इसीलिए करना है ताकि मैं खर्चा कम करूँ, लेकिन अब जो मेरे लोग हैं आसपास के वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा फोन ले लो जिसमें जो है एप्लीकेशंस ना हो, जिसपे तुम ये सब कर सको तो तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, मतलब खर्चा कम करने के लिए मैं एक और खर्चा कर लूँ। और ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने जो है मुझे एक क्यूट सा डिवाइस जो है उसका पोस्ट भेजा। अब ये जो टाइनी सा दिखने वाला फोन है, ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको आपके मेन जो फोन की लत लगी हुई है आप उससे दूर हो जाओ। अब इस पे जो है सारे मेन काम हो जाते हैं, जैसे अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप गाने सुन सकते हो, मैप्स देखने मैप देख सकते हो, कॉल्स उठाने हैं वो कर सकते हो, टेक्स्ट करना है किसी को टेक्स्ट कर सकते हो, ऊबर जो है वो भी बुक कर सकते हो एंड फोटोज भी खींच सकते हो। लेकिन वो जो डूम स्क्रोलिंग सोशल मीडिया चलाने की आदत है वो सब बच जाएगी। और ये जो है बहुत ही हैंडी सा एकदम 3 इंच का छोटा सा फोन है, छोटी सी स्क्रीन है उस पर, तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। बताओ यार बताओ, देखो मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस डिवाइस की जो यू नो प्राइस ढूंढने जाऊंगी तो मैं अभी से ग्लिच करने लग गई हूँ ये सोच सोच के कि ये कितना महंगा होगा। इतने में तो बड़ा अच्छा वाला फोन आ जाएगा जिसमें मैं स्क्रॉल भी कर पाऊंगी। वैसे आप बताइए कि क्या घाटे का सौदा है या फिर सही है, कशिश ले सकती हूँ ये वाला डिवाइस? बताइए मुझे आपको क्या लगता है 3311063 पर। फिलहाल बहुत ही अमेजिंग चेंजेस AI में आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे हम थोड़ी सी देर में, सो स्टे ट्यून्ड रहिए, वॉल्यूम बढ़ा के गाने इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio Olive Bar. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स। शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। Sounds unbelievable, but it's real.
0: Lulu Fashion Store ka half pay back is back.
1: Selected ready-made garments, sarees, churidas, footwear, ladies bags aur baby accessories par 200 riyal ki shopping kijiye aur 100 riyal ka free shopping voucher instantly paiye.
0: Yani fashion bhi aur rewards bhi.
1: Half pay back, shop more. Get rewarded instantly only at Lulu Hypermarket.
2: Lulu, where the world comes to shop.
3: G-E-C-A.

मेटा ने म्यूज लॉन्च कर दिया है और चैट जीपीटी ने लॉन्च कर दिए हैं डॉट्स। अब ये काम जो है वो सिमिलर ही करते हैं, बस नाम दोनों के अलग है, थोड़े थोड़े फीचर अलग हैं, पर उनके बारे में ज्यादा हम डीप जो है डाइव नहीं करेंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशन शो आपके लिए आई हूँ, द टेक शो जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, म्यूज और डॉट ये दोनों ही यू नो पर्सनलाइज एजेंट्स होने वाले हैं AI के, जहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन्हें पूरी तरीके से याद रहेगी। यानी ये बार बार मेल लिखते वक्त या कोई भी चीज़ जब भी आप इन्हें कुछ करने को बोलते हैं तो बार बार आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। एंड साथ ही साथ में प्रिवेसी का एक थोड़ा सा चक्कर होने वाला है, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐप्स की परमिशन जो है, चाहे वो आपकी मेल्स हों, आपकी शॉपिंग ऐप्स हों, आपके पेमेंट ऐप्स हों, सबका चार्ज जो है ये लेने वाले हैं, यानी सबको अपने अंडर में ये करने वाले हैं। एंड इनसे फ़ायदा ये होगा कि ये जो है कभी भी काम करना बंद नहीं करेंगे। सो सपोज आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपने एक बार फीड कर दिया कि यार मुझे अपना कंपटीशन जो है वो ट्रैक करना है, सो ये वो कंपटीशन जो है वो ट्रैक करता रहेगा एंड कुछ भी ऐसी न्यू अपडेट होगी वो आपको दे देंगे। और साथ ही में चाहे आप इन्हें शॉपिंग करने बोलें, प्लेन टिकट्स बुक करने बोलें, ये सब कुछ कर सकते हैं लिटरली। बाकी और डिटेल में जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा यूज़ करेंगे, फिर आपको बताएंगे, क्योंकि मैं आपको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, किसी के सुनी हुई इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं देना चाहती। सो मैं जो है इनमें से किसी को यू नो यूज़ करके फिर आपको बताऊंगी कि आखिर क्या चल रहा है। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
2: Now? We still have time for the festive season.
1: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
0: Aap sun rahe hain Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

आई रियली डोंट नो कि आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस बात पे, लेकिन बचपन में ना स्कूल में जब मैं पहले फ़ोन की ज़िद कर रही थी तो मुझे टच स्क्रीन फ़ोन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ब्लैकबेरी वाला फ़ोन जिसमें छोटी छोटा छोटा छोटा यू नो कीज़ होती हैं, छोटा वाला पूरा का पूरा कीबोर्ड होता है। याद आ गया कौन सा फोन? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तो वही आइकॉनिक यू नो फिजिकल कीबोर्ड वाला फोन जो है वो अब वापस आ रहा है, टाइटन इलाइट 2 ब्लेंड्स ब्लैकबेरी नोस्टेल्जिया में एंड एक मॉडर्न टच जेस्चर के साथ जो है ये आपको बिल्ट इन क्वर्टी की के साथ मिलने वाला है एंड अब ये जो है आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड इसमें जो कलर्स है ना वो भी काफ़ी क्वर्की आए हैं, जैसे आईफोन 17 का जो कलर है ऑरेंज उस कलर में ये आया है एंड अभी आइस ब्लू जो काफ़ी वायरल हो रहा है उस कलर में आया है। सो यार आई एम क्वाइट एक्साइटेड, मुझे जो है ये वाला फ़ोन अगर मैं ले सकूँ तो मैं बिल्कुल लेना चाहूँगी। आप बताइए मुझे कि आप वो जो पहले मैं फ़ोन की बात कर रही थी 3 इंच वाले फ़ोन की, वो मुझे लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आईफोन के साथ एक फ़ोन एक्स्ट्रा चाहिए। सो बताइए मुझे आप लोगों का क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है 3311063 पर। फिलहाल मुलाकात होगी इस गाने के उस पार, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूफ के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
3: अपने loved ones को पैसे भेजना हुआ और भी easy. कतर में पहली बार हल्दार exchange लाया है Visa Direct, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
4: हाय एवरीवन, दिस इज बेनी दयाल हियर, बेनी दयाल हियर, ऑलिव रेडियो 106.3, जियो बिंदास, जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन।
7: टी ई सी

भाई साहब फोन पे जितनी अपडेट्स आ रखी है रात भर में, जितने नोटिफिकेशंस आ रखे हैं वो तो हमें जानने ही है, लेकिन हमें फोन की सुबह सुबह स्क्रीन भी नहीं देखनी है। ये प्रॉब्लम हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आई होगी जब हमें बोला गया हो कि सुबह सबसे पहले उठते ही ब्लू लाइट नहीं देखनी होती, फोन नहीं देखना होता। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया। लेकिन एक लड़की है जिसने इग्नोर करने से मना कर दिया और एक ऐसी मशीन बना दी जिससे नोटिफिकेशन जो है वो न्यूज़पेपर के तौर पे आ जाएंगे। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कसू संचो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, अगर मैं बात करूँ ना, तो इस लड़की ने क्या किया है कि अपने फ़ोन को एक प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया है जो कि पर्सनलाइज न्यूज़पेपर जो है वो डिज़ाइन कर देता है, बना देता है। जितने भी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, चाहे पार्सल आने वाले हो, किसी का कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो, जो भी सुबह के नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब सुबह जैसे ही ये मैम उठती है इनको प्रिंट हो गए एक न्यूज़पेपर के फॉर्म में मिल जाता है, ताकि इन्हें अपना फ़ोन जो है वो सुबह सुबह ना टच करना पड़े एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिस भी ना हो। तो बताओ यार, जो बोरिंग न्यूज़पेपर्स होते हैं वो छोड़कर ऐसे पर्सनलाइज न्यूज़पेपर मिल रहा है, बताओ, ताकि फ़ोन भी ना देखना पड़े और बढ़िया न्यूज़ भी मिल जाए, नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अच्छा आइडिया वैसे है ना, लेकिन काश मैं इतनी टेक फ्रेंडली होती, इतनी क्रिएटिव होती कि मैं भी ऐसा कुछ बना पाती। फिलहाल आप अमेजिंग वाले गाने इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
3: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट।
4: लुलु, where the world comes to shop.
5: K-E-C-H.
6: Tech Show. Tech Show.
7: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
8: जबरदस्त है।

सो जितने भी मेरे गेम लवर फ्रेंड्स हैं और वो ये चाहते हैं कि यार हमें कोई गेम चाहिए लेकिन यू नो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा दिमाग भी ना लगे, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे. सो एक गेम है, वो गेम मैं आपको बताती हूँ. उसका नाम जो है डाइल्ड जीजी है. इस पे क्या होता है कि कोई भी आपको एक कलर जो है वो दिखाया जाएगा स्क्रीन पे मैक्सिमम 5 सेकेंड के लिए, एंड आपको अपनी मेमोरी के बेसिस पे थोड़ी देर बाद उस शेड को मैच करना है. ऐसे देखने में सुनने में बड़ा ही आसान गेम लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं. हाँ जी, वेलकम. मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं द चेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ. अब देखिए यार, अगर मैं बात करूँ ऐसे गेम की, तो ऐसे बहुत सारे गेम जो है इस वक्त अवेलेबल हैं जो आप जाकर वेबसाइट पर खेल सकते हैं एंड आपको हर रोज़ एक नया चैलेंज मिलेगा. सो डाइल्ड जीजी नाम का ये गेम है, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा. आप सोलो खेलना चाहें तो भी खेल सकते हैं. तो बहुत ही फन गेम है, एंड स्पेशली वो लोग जो अपने आप को बहुत क्लेम करते हैं ना कि यार हमें तो शेड्स का काफ़ी नॉलेज है, उनके साथ खेलिए, बहुत मजा आएगा. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड, जियो पिंदाज.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
2: मेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
1: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
2: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
1: तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
2: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
3: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स always quite overwhelming, but when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
4: G-E-C-S.

देखिए जी, कहने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि कल लौट कर वापस आ पाए और आपको एंटरटेन कर पाए। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया, क्योंकि थोड़ी सी देर में मुस्कान आएगी, एक बड़ी सी मुस्कान लेके हैप्पी वीकेंड पे, जहाँ पे आपकी वीकेंड को थोड़ा एक्स्ट्रा हैप्पी बनाने की वो कोशिश करेंगी। बाकी मैं यहाँ से चलती हूँ, अब नेक्स्ट वीक द टेक शो में टेक्नोलॉजी की और बातें करेंगे, और हर रोज थोड़ी थोड़ी बात जो है अपनी नॉर्मल शो पे यानी लाइफ मस्त है पे टेक्नोलॉजी की करते रहेंगे। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो, एंड ताकि आप हम जितना फन मस्ती मजा कर रहे हैं वो भी करते रहें। फिलहाल स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑल पर, अमेजिंग गाने एंजॉय करते रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम. सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR.
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी.
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027.
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो.
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल.
3: Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
4: Now? We still have time for the festive season.
3: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: मेरी बेटी के लिए justice चाहिए.
7: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
5: Overseas release by Zee Studios.

Happy Friday. You are listening Radio All at 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और ये है Happy Weekends. और weekend start हो और थोड़ी luxury की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? Weekend is all about luxury. चाहे वो आपके आराम को लेकर हो, आपके खाने को लेकर हो या आपके you know shopping को लेकर हो. So Doha Jewelry and Watches Exhibition is happening at DECC और काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन आज 3 से 10 बजे तक होने वाला है. यहाँ पर अभी 10 बजे नहीं है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट. यहाँ इंटरनेशनल और रीजनल ज्वेलरी एंड वॉच ब्रांड के कलेक्शंस को देखने को आप जा सकते हैं. एंड सच बता रही हूँ, मतलब आप वहाँ देखोगे और आपको लगेगा कि यू नीड मोर मनी. लेकिन मुझे ज्वेलरी से ज़्यादा ऐसा लगता है कि लग्जरी एक्चुअली होती क्या है. किसी के लिए डायमंड नेकलेस, किसी के लिए लग्जरी वॉचेस, और किसी के लिए फ्राइडे को बिना अलार्म के 10 बजे तक सोना लाइक मी. किसी के लिए लग्जरी है बिजनेस क्लास फ्लाइट, और किसी के लिए है कि बस घर का खाना मिल जाए. सो घर में कोई काम ना हो तो और फुल डे आपके पास है, वो भी एक लग्जरी है. सो कहता यू टेल मी, आपके लिए रियल लग्जरी क्या है? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. फ्राइडे को खूब सारी मस्ती करने के लिए आ चुके हैं. बात करेंगे भाई, शाम हो चुकी है, क्या क्या आपने कल शाम से लेके आज तक किया और अभी आपके क्या प्लान्स हैं. वी विल टॉक अबाउट दैट. नंबर तो सेम है 3311063. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

आपको गेमिंग पसंद है, कॉमिक्स या फिर ट्रिवियाज या फिर टेक्नोलॉजी, देन मे बी आप ऑफिशियली मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस इवेंट में जा सकते हो, विच इज़ गीक एंड 2026। कंटिन्यू चलने वाला है रात के 11 बजे तक। दिस विल बी इन लोसेल, और गेमिंग आर्ट और वर्कशॉप्स, कॉम्पिटिशन्स, बोर्ड गेम्स, कैरियोके, लाइव परफॉर्मेंसेज और बहुत कुछ है यहाँ पे, मैंने कल भी बताया था आपको। सो वीकेंड बड़ा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर गए थे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा उनको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम, नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रो।

0: यार पूरे देश को।
1: फ्राइडे का ना एक यूनिवर्सल रूल होना चाहिए कि आइसक्रीम के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ कुछ फन प्लान कर रहे हैं तो मॉल ऑफ कतर में इंटरनेशनल आइसक्रीम शो भी चल रहा है। अब मैं आपसे कहूंगी कि यार इस शो के लिए ना आपको बहुत जल्दी से जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7:30 इज द टाइम जो ये शो खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ आइसक्रीम खाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लाइव एंटरटेनमेंट, इंटरैक्टिव साइंस एक्सपेरिमेंट्स, कैरेक्टर्स और बहुत सारी फन एक्टिविटीज जो है यहाँ पे हो रही है। सो बेसिकली बच्चों के लिए बहुत फन हो जाएगा। अगर आप उसके आसपास हैं मॉल ऑफ कतर की तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, एंड बच्चा जो है वो खुश भी हो और आइसक्रीम कितनी खाई ये भी कंट्रोल करता रहे और उसे पता रहे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। सो बहुत मजा आता है। सो चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पिस्टैचियो, हर तरह की आइसक्रीम्स है वहाँ पे। एंड आई वॉज वंडरिंग कि भाई कितने सारे फ्लेवर्स हैं, मैं आज तक सिर्फ एक ही आइसक्रीम के पीछे भागती हूँ विच इज चॉकलेट। और अगर मुझे डार्क चॉकलेट या फिर वो यू नो आलमंड चॉकलेट टाइप का कुछ मिल जाए तो मैं तो कहीं और देखती भी नहीं हूँ। यू टेल मी कि आप हर बार डिफरेंट यू नो आइसक्रीम्स को पसंद करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं यार आपकी जो एक वन फेवरेट है उसी के पास जाना है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
3: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
2: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
3: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपनी ड्रीम कार जीतो।
2: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: कि एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
2: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: द एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas released by Zee Studios.

भाई आज सुबह से ही हर कोई दृश्यम 3 की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे वही बात हो रही है, लोगों को पूछो तो वही बात हो रही है। बॉलीवुड लवर्स ना आज की डेट याद रखेंगे क्योंकि आज दृश्यम जो है वो रिलीज हो गई है। और थिएटर्स में दृश्यम की अगर मैं बात करूँ, द कंक्लूजन है ये बेसिकली थर्ड पार्ट, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग के साथ आपको बढ़िया दिखने वाला है। 11 साल हो चुके हैं जब पहली दृश्यम आई थी और अभी की दृश्यम आई है। हर मूवी देखते हुए ना आपको इतना अच्छा लगता है, लेकिन ये मूवी देख के आप बहुत इंटेलिजेंट फील करोगे क्योंकि आप पूरा टाइम गैस ही करते रहोगे कि क्या चल रहा है। सो एक्चुअली हुआ क्या था ये आप सोचते रहोगे पूरा टाइम। सो रिव्यूज आर गुड, मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इस वीकेंड थोड़ा सा मूवी वगैरह देख के आते हैं, थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, देन यू कैन गो यार। मतलब नाइट शो भी है, इवनिंग में भी है, आप आराम से जा सकते हो। यू टेल मी आपका क्या प्लान है आज शाम का। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। ये है हैप्पी वीकेंड्स, जियो बिंदास।

स्पोर्ट्स की बात होती है ना, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि भाई इंडिया की बात तो होनी चाहिए। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया था, और कल भी मैच था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, जिसमें दूसरा सेमीफाइनल था। तीसरा प्लेस प्ले ऑफ जो है वो कल होने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, और इसी के साथ बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में भी एशियन गेम्स में फाइनल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हो रही हैं। इंडिया वर्सेज श्रीलंका मैच है, उसके बाद इंडिया ने 124 रन से पूरा मैच जीत लिया था। अब इतनी सारी नई नई चीजें, और फ्राइडे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। भाई वीकेंड है, प्लस आपके पास टाइम भी है थोड़ा बहुत, प्लस आपको अगर क्रिकेट देखना पसंद है या एशियन गेम्स में आपका इंटरेस्ट है, देन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। यू नो वैभव सूर्यवंशी टाइम मैगजीन के 100 राइजिंग स्टार्स की लिस्ट में भी आ गए हैं। ही सो यंग, पर जब भी उनका नाम पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में उनका नाम होता है, सो आई फील कि यार काश मैं भी इतनी एक्टिव होती। You are listening Radio Olive, मैं हूं मुस्कान और ये है Happy Weekends।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Drive the Dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 Riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
2: Plus 1 lakh Riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
1: Offer valid till 16th March 2027.
2: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
1: Drive the Dream, only at Abu Sidra Mall.
3: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऑफकोर्स आज शाम यानी कि फ्राइडे इवनिंग की बात करते हैं. नाइट पर्सनैलिटी जो है वो हम डिफरेंट हो जाते हैं. एक बोलता है यार फ्राइडे इवनिंग होती है और लेट्स गो आउट. दूसरे टाइप का आदमी बोलता है यार फ्रेंड्स के साथ डिनर करना है. तीसरा होता है जिसको मूवी और पॉपकॉर्न ही चाहिए और स्पेशली जब अजय देवगन की दृश्यम 3 आई हुई है द कंक्लूजन. चौथा है जो बोलता है यार लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे फुल वॉल्यूम पे. और एक और होता है दोस्त जो कहता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे घर से मत बुलाओ. बस ऐसे टाइप के भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पजामा पहन के, फोन साइलेंट करके, अपनी लाइट्स को डिम करके और दुनिया से टेम्पररी ब्रेकअप करके रहना पसंद होता है फ्राइडे सैटरडे को. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अप 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और ये हैप्पी वीकेंड्स. एंड ऑनेस्टली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. मतलब हर किसी की अपनी पसंद है. ए बी सी डी ई एफ कोई भी चॉइस हो आपकी, मतलब इट शुड बी लाइक कि आपने अपना वीकेंड अच्छे से इंजॉय किया. बस ऐसा होना चाहिए. सो कभी कभी डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग इज द प्लान. सो आज मेरे तो बहुत सारे प्लान है. आपसे बात करने के बाद आई विल गो एंड वॉच दृश्यम ऑल्सो. बड़ा मजा आएगा. और इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें जो मैं प्लान कर रही हूँ. ओटीटी पर भी कुछ नई चीजें हैं जो आई हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
1: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: ओवरसीज रिलीज बाय जी स्टूडियोज।
0: रेडियो ऑलिव पर
5: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

सो ओटीटी की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं कि भाई इस पूरे हफ्ते में ओटीटी पे क्या क्या आया। फर्स्ट विल टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स। तो ऑन नेटफ्लिक्स पे एक तो परिणीति चोपड़ा की शर्क आई थी पिछले हफ्ते, विच वॉज वन टाइम वॉच, बट बढ़िया मूवी है। कई सारे लोगों ने उसको रिव्यू जो है काफी खराब दिए और उसकी वजह से कई सारे लोगों ने उसे देखा नहीं। बट आई वॉज थिंकिंग कि यार क्यों इतने खराब रिव्यू है उसके। दो एपिसोड स्टार्टिंग में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सबकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है उसमें। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो शक जिसका मतलब इसे टैगलाइन है ट्रस्ट नो वन, विच वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद मुझे तो बढ़िया लगे, 7 एपिसोड थे और बिंज वॉच तो नहीं किए मैंने, आई वॉच लाइक एक एक दो दो एपिसोड करके, पर बहुत मज़ा आया। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा अभी कॉन्वर्सेशन में है, और भी बहुत सारी मूवी आई हैं अमेजन प्राइम पे जिनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। आप कहीं मत जाइए, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
3: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
2: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
3: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
2: तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
3: नेस्टो 10-20-30, सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।

0: गई।
1: फ्राइडे आते ही ना हमारी जो बॉडी है वो बोलती है कि फाइनली रिकवरी का टाइम आ चुका है। पूरे वीक अलार्म सुन सुन के उठना सबसे बुरा लगता है मुझे, और फ्राइडे सैटरडे को बिना अलार्म के उठना बेस्ट पार्ट है लाइफ का। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे ही थर्सडे की इवनिंग आती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे खत्म सी लगती है। आज फ्राइडे है, ऑलमोस्ट खत्म होने को है ये भी। आज इतना लेट सोना है, सो जाओ आराम से, कल सैटरडे है, यू नो कल थर्सडे को भी लोग बहुत लेट सोए होंगे। बट देन सैटरडे मॉर्निंग ना बॉडी जो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, हमारा नॉर्मल जो रूटीन है वो क्या था। कुछ लोग वीकेंड में 10-11 बजे तक स्लीप जो उनका स्केड्यूल है वो रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपना रूटीन नहीं चेंज करूंगी। अदरवाइज क्या होता है कि वीक डेज आते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग फ्राइडे नाइट 2 बजे तक जागते हैं और सैटरडे आफ्टरनून तक उठकर बोलते हैं कि वीकेंड बहुत शॉर्ट था। सो लेट्स सेटल दिस, वीकेंड में स्लीप कैचअप करनी चाहिए या फिर नॉर्मल रूटीन मेंटेन करना चाहिए, आप मुझे बताइए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। सो फ्राइडे नाइट आपका लेटेस्ट बेड टाइम क्या होता है बताइएगा जरूर। सेम नंबर पे सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

ओके लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस वीकेंड, ठीक है? फोन को साइड में रखना है, साउंड को थोड़ा सा इजी बनाना है, ट्राई इट. और डिनर के टाइम पर फोन नहीं, मूवी का टाइम फोन नहीं, और फ्रेंड्स के साथ अगर कॉफी पर हो तो भी फोन नहीं, इंस्टाग्राम चेक नहीं करना, व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं चेक करना अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो, और रील्स तो बिल्कुल नहीं देखनी. कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं आप? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड. सो आज हम रिलैक्सेशन के नाम पर भी स्क्रीन देखते हैं. थक गए, चलो रील्स चलाते हैं. बोर हो रहे हैं, रील्स चलाते हैं. खाना खा रहे हैं, रील्स चला रहे हैं. वेटिंग फॉर समवन, रील्स चला रहे हैं. मैं तो हर 5-10 मिनट में फोन खोल लेती हूँ. और कभी कभी ना हम फोन चेक करते करते विदाउट इवन नोइंग कि वाई वी पिक्ड इट अप, सो चलाते रहते फोन. सो हेयर इज अ लिटिल हैप्पी वीकेंड चैलेंज कि आज 2 घंटे के लिए एटलीस्ट फोन फ्री रहने की कोशिश कीजिए. और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट टेल मी यू आर लिसनिंग टू दिस वाइल चेकिंग योर इंस्टाग्राम. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, मैरियट मार्की सिटी सेंटर दोहा। कम एंड डिस्कवर फेस्टिव फैशन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडिट।
4: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
5: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: Okay, now let's talk about something almost everybody has an option on. Cars. National Museum of Qatar में Qatar Auto Museum Project का sneak peek चल रहा है, where visitors can explore automotive heritage and get a look at what's planned for the future museum. So, सुन रहे हैं आप Radio Olive 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Happy Weekends. But, यहाँ पे बात करते हैं, it's not about just cars और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पैसा बिल्कुल problem ना हो, तो आप कौन सी कार खरीदना चाहोगे? मतलब हर किसी के मन में ना ये सवाल आता ही है कि यार अगर मेरी फेवरेट कार मुझे मिलनी होती और मतलब खरीदनी होती जिसके लिए मुझे कोई बजट ही नहीं होता, तो हर किसी के मन में एक ना एक ब्रांड होता है, चाहे वो एक कोई विंटेज कार हो, कोई क्लासिक मर्सिडीज हो, रेंज रोवर हो या फिर फरारी जैसी कोई कार हो. एक दिन ये हम सोचते हैं कि यार ये कार जरूर खरीदेंगे, बिकॉज कार सिर्फ कार नहीं होती, फॉर सम पीपल इट्स स्टेटस. ठीक है, किसी के लिए वो इंजीनियरिंग है, किसी के लिए फ्रीडम है, और कुछ लोगों के लिए उनका सपना है. सो मुझे तो ऐसा लगता है कि कार होनी चाहिए, बस एसी ठंडा होना चाहिए, बाकी सब बाद में. सो कदर में तो स्पेशली मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि बस कार होनी चाहिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. यू टेल मी कि आपके लिए वो कौन सी स्पेशल कार है जो आप हमेशा से खरीदना चाहते हैं, या आपको भी मेरी तरह लगता है कि नहीं बस कार होनी चाहिए, कोई सी भी हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, ये है हैप्पी वीकेंड.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दाना दल बहार, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुकवा के अलखोर.

0: फ्राइडे का ना एक और प्रॉब्लम है, आज बच्चों को कहाँ पर लेकर जाना है ये हर पेरेंट सोच रहे हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड। आई एम श्योर आपने पूरे दिन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल किया होगा। पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि घर पर रहकर इन्हें ये सिखाया जाए, बच्चे कहते हैं नहीं हमें मूवी जाना है, मॉल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। पूरे हफ्ते तक उनके पास भी पूरा एक स्केड्यूल होता है, स्कूल से आना, फिर उनकी बाकी के एक्स्ट्रा क्लासेस और उनके यू नो बाकी के जो प्लेइंग वाले गेम्स होते हैं वो उनको खेलने हैं शाम को, वो सब होता है। और पर वीकेंड उनको भी लगता है कि यार थोड़ा सा घर पर सब है तो थोड़ा बाहर जाया जाए समवेयर, उनको कहीं ना कहीं बस फन चाहिए। सो नो फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मैं आपको बस यही बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और मशरब की फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर इज़ वन ऑफ द इंडोर ऑप्शन जहाँ पर आप गेम्स, बोलिंग और कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो विद किड्स। सो ऑनेस्टली इवेंट से ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग है फैमिली वीकेंड का डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड का फाइनल डिसीजन जो है वो पेरेंट्स नहीं बच्चों का होता है। सो यू टेल मी आपके घर में फ्राइडे का प्लान कौन डिसाइड करता है, मम्मी पापा या फिर बच्चे? यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स।
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
2: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
1: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
2: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
1: तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
2: नेस्टो 10-20-30, सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
2: कूल सॉन्ग।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
2: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
1: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
2: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
1: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
2: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: अच्छा ठीक है, अब जाने का टाइम हो गया, लेकिन एंड में जाते जाते एक फाइनल टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, गूगल नहीं करना है, सोचना नहीं है, बस पहले आपको आंसर करना है। सो योर फ्राइडे पर्सनालिटी क्या है? वो डिनर और फैमिली वाला, फ्रेंड्स और कॉफी, मूवी और पॉपकॉर्न, शॉपिंग या फिर लॉन्ग ड्राइव के साथ म्यूजिक, या फिर घर पे रहना और किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं सहना। बाय द वे, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है, पर डिपेंड करता है कि किस फ्राइडे क्या करने का मन है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। और ऑनेस्टली वीकेंड का परफेक्ट प्लान वो नहीं होता जो इंस्टाग्राम पर सबको ब्यूटीफुल दिखे। परफेक्ट वीकेंड वो होता है जिसके एंड में आप जेन्युइनली बोल पाओ, हाँ यार मेरा वीकेंड मैंने इंजॉय किया। मे बी यू वेंट आउट, मे बी यू मेट योर फ्रेंड्स, मे बी यू वॉच्ड अ मूवी, मे बी यू ट्रैवल्ड, मे बी आपने पूरे दिन सोफे पर अपना टाइम स्पेंड किया हो और मूवीज देखी हो, एंड दैट्स ओके, क्योंकि वीकेंड का पर्पस हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे, यू टेल मी, मेरे तो जाने का टाइम हो गया, फ्राइडे इज ऑलमोस्ट ओवर, तो आप मुझे बताइए कि आपने अपना थर्सडे इवनिंग और फ्राइडे का पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, क्या क्या शॉप किया, कौन कौन सी नई चीजें ट्राई की, और सैटरडे के आपके क्या प्लान्स हैं। फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st to 4th October तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: This is Club Olive on Radio Olive. Club Olive. Radio Olive 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।